0: Hi, my name is Eric Ortiz, Vice President of Pi Eta Kappa, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Dhoka dhadi chetavani. Apna kyun nahi login password ya MF. A. Kabhi saajha na karein. Kripya nimnalikhit baaton ko yaad rakhein. Apne password ya MF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी एमएफ ए अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या एमएफ ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
2: Hi, I'm Tamianne Johnson, but you can call me Tammy. And I'm excited to welcome you to the first season of Soul Intent. For over two decades, I've moved across entertainment, media, marketing, social impact, communities and cultures. And one thing I've learned is this: everyone has a story behind the story. This season, Soul Intent will explore the topic of culture, the people, experiences, passions and choices that shape who we are and what we create. I'll be sitting down with leaders, creatives, entrepreneurs, artists, and change makers to go beyond the title and uncover the person, the journey, and the intent behind it all. Soul Intent, stories that shape us, conversations that connect us. Join me every Wednesday at 4 p.m. Eastern Standard Time on YC Radio on the TuneIn app or on the YC Cardinal app or at york.q.